0: मालपिंगोंगों खसुन समीर निर्माण कार्यक
1: इन्हें तो नया नडुआ तिवरुना जब ऐसे में कहमें तीनी सा एक मिनट में नडुआ तिवरुना है भाई साथी के सहरे काय वो देनु नहीं दी
2: थे या यू आप हो गए ना देने ठीक है काले के रिश्तेन लापी कोई तरह दुकान दे हिटिये लोग बुदा के प्रश्न इत्ते क या दें डिवोर्स होना दें अभी हम वो सातुटी मंगले के टेलेस दिए
3: एक तमाह जीवित है क्या सातुटाई दुकाई देखो मेरे टेन अभी वो देखेंगे कि टोट काम पावे नो दरे इच्छा रहे
0: सती ये दिन अपना रात्रि अटटे आईटीएन पराने